0: बोले मटन पे नी न कर दिखारे, तू पलक बोले मटन पे नी न कर दिखारे।
1: दिया हुंदट तारुन ताली दंद तु आजी पेल्ल ताली, इन्न टिकिनी टिकिली वागी रसकर ते जंबुआ आई अप्प मुन चोग।